कृष्ण बुझे ममता गए नाठे पै परमा खित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा कृष्ण बुझे ममता गए नाठे पै परमा

पूजो चारे। तुम सब ही तेरे तनरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद है जेती वर्णत पिन पिन तोह तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पूपा अंडज जेर जसे तिज कीनी उत्पज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा अब बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार या सिख संग्रो दोष जीते उठ बतुत बाता सकल मुलेश करो रण काता जे अस्तु तब सरणी परे दिन के दोष्ट दुगत वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे दिन के तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताहि सब काला दोष रहित डरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो ताके ताप तन कमो हरि हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दोष शास्व सक न कोई एक बार जिन तुम संभारा काल वास्ते ताहि उबारा जेन नर नाम त्यारु कहा दारद दोष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दल उबारी सर्व ठावर मोहो सहाई दोष्ट दुख ते ले बचाई सवैया पाई गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ सरी अस्पान कृपा तुमरी कारो मैं न कहे सब तोहे बखाने ओ दोहरा।

0: अंतरजामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूरे नानक दास इह सुख मांगे मोह कौ कर संतन की दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उदया गर दास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा।
1: वाहिगुरु जी ने किन्ने

0: गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और सतगुरुदेव जी महाराज उसकी निगाह पढ़ते सुन के ठीक नहीं। और एक दिन वाकई कह देता, सतगुरु मेरी इच्छा है कि मेरी कुख तो थोड़े वर्गा ही कोई पुत्र पैदा हो। सतगुरु हंस के कहने लगे, मेरे वर्गा तो मैं ही हाँ, मैनू पोता तो मेरी मां मैनू कह रहे। और मन बदल के रख दिया। कहानियां परम पुरखा दी गुरुआ दी मैं इस वास्ते रखता कि अनेक जवान ऐसे ने भजन कर करके जिन्हों की वासना सीमा च, अनेक बुढ़े ने संसार के इतिहास के जो निर्माणता की मूर्ति बन गए, अनेक बच्चे ने संसार के चर्चे जो ब्रह्म ज्ञानी बन गए, अचेत नहीं रहे सुचेत हो गए। प्यो ने भी सीधा कह दिता हरनाथ कृष्ण नहीं, जल है राम हल है राम, पंजा ही वरिया का ध्रुव से ब्रह्म ज्ञानी बन गए। और नौ साल का बाबा फरीद सी ब्रह्म ज्ञानी बन गए। नमाज पढ़दियां पढ़दियां, खुदा खुदा करदियां करदियां, अल्लाह अल्लाह करदियां करदियां, तो मैं करा अगर बच्चा सुचेत नहीं होया बचपना व्यर्थ चला गया, जवानी निर्वासना नहीं हुई जवानी व्यर्थ चली गई, बुढ़ेपा निर्माण नहीं होया बुढ़ेपा व्यर्थ चला गया। बाल जवानी हर विरुद्ध गुण तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी। भजन तो बिना तो व्यर्थ समझ लो, क्योंकि बच्चे की सारी जिंदगी अचेतपने च लंघ जाएगी, जवान की जवानी वासना च लंघ जाएगी, बुढ़े की बुढ़ेपा अंकार में लंघ जाएगी, औमे च लंघ जाएगी। मैं बहुत कुछ जानता मैं बहुत कुछ जानता इसे गल में लंघ जाएगा, कमर झुक जाएगी मन नहीं झुकेगा बुढ़े अक्सर ऐसा हो, कमर झुक गई शरीर झुक गया अंदरों अहंकार बड़ा प्रबल हो। भजन है किसी भी हालत में किया जाए शरीर भी उन्हें सफल कर देना, और सफल होए ने बच्चे, सफल होए ने बुढ़े, सफल होए ने जवान, निराशा वाली कोई गल नहीं। बच्चा पांच मिनट भी वाहगुरु वाहगुरु करे तो बुढ़े दे एक घंटा वाहगुरु वाहगुरु करने नालों ज्यादा है, इन्नी मेहनत करते, क्योंकि अजे मन बहुता गंदला नहीं है बच्चे का। जो गल बच्चे की पांच मिनट बनेगी वो जवान के बुढ़े के वास्ते ज्यादा समय लगेगा, वक्त ज्यादा लगेगा। आम संसारिक कोई काम करना है तो जितना तिखा जवान कर लेगा बच्चा नहीं कर सकता, एक मासूम बच्चे ने की करना है। पर मैं फिर अर्थ करा जिहड़ा भजन है अगर बच्चा करे जवान के बुढ़े नालों के लंघ जाए, अगर करे कोई थोड़ी उसनों इस ढंग की प्रेरणा मिले, तो प्रेरणा माँ बाप ने देनी है, जे माँ बाप आप ही नहीं करते तो बच्चे ने भी खास प्रेरणा देनी। खुद किस तरह की हिफाजत ने प्यो ले ते बच्चे नु आके तू गुरसिख बन किस तरह बने, आप शाम को बोतल शराब की खोल के बैठा हो ते बच्चे नु आके बच्चे तू अमृत छक ले किस तरह छकेगा, वह भी शराब ही पीएगा अमृत किस तरह छकेगा। बच्चा पांच सात मिनट सवेरे शाम नाम जपे ब्रह्म ज्ञानी बनने की ज्यादा संभावना, भगत बन जाए। और मैं करा जवान का वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि अंदर वासना है, पहले तो उन्होंने मद्धम करेगा सहजे सहजे, फिर किधरे भजन का रस आएगा, उन्होंने जो है नाम का रस आएगा, तिने अवस्थावान सफल हो सकती, बुढ़ा नाम जपे निर्माण हो जाएगा, जवान नाम जपे निर्वासना हो जाएगा, बच्चा नाम जपे सुचेत हो जाएगा, अचेतपना उसका खत्म हो जाएगा। मन दिया जड़िया तीन हालत ने तप गुण रज गुण छत गुण, इसी विचार मैं कल कर देंगे, अज इतनी विचार प्रवान करनी है। सतगुरु रहमत करन बख्शिश करन, उम्र के जिस हिस्से तुसी इत्थे बैठे हो सतगुरु से सफल करन बचपना साडा, सतगुरु भाग लावन जवानी नूं, और सतगुरु सफलता प्रदान करन बुढ़े ते। नाम जपदे हां निर्माणता की मूर्ति अगर बुढ़ा बन गया बुढ़ेपा सफल हो गया, वासना सीमा के चल गई है जवानी सफल हो गई, बच्चा सुचेत हो गया इतना कि कह सके बापू जल थल हर नाकश नहीं, जल थल ते राम है दिखाई दे रहे हैं, इन्हू कौन आखेगा बच्चा, ये तो बुजुर्ग हो गया, ये महान हो गया, बहुत बड़ा सियाणा हो गया, सूझ मिल गई समझ मिल गई। तो जिस अवस्था में मनुख नाम जपना शुरू करता है ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਨ ਲਈ ਬੁੱਢਾ ਬਣਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੈਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਕੀਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਛੇਤੀ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਵਾਨ ਨਾਮ ਜਪੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਪਰਮ ਰਸ ਦਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 3 ਹਾਲਤਾਂ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ। ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋਗੇ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਕਿਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
1: ਕੇਲਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening to Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

पुन हो रहे ने, खंड पाठ बहुत हो रहे ने, लंगर बहुत चल रहे ने। गुरसिख प्यारे हो जिन्ना प्यारे हो पुन हो रहे है, जिन्ना कथा कीर्तन हो रहे है, बीजी बहुत दान पुन हो रहे ने। तुसी ठीक दान कर रहे हो, ठीक किरत है तुहाडी, पर जेड़े असी दान लेन वाले हैं ना, साडे शरीर रूपी धरती कलर बन गई। महाराज क्यों लाहा पावे, दान लेन वाले हैं ना, जे खेत कलर है ते कदे नहीं जमूंगा। साडिया दे साडियां दे मतदान ले छकाउंदा है ना, पांच जपजी साहब दे पाठ कर ता भार हल्का होगा। पांच जपजी साहब दे पाठ ते हो चौकीदार है, हाक मारनी पैंदी है, पता तक कर दे दर दा फर्ज हुंदा। असीं भी तुहाडे चौकीदार हैं, असीं कलर बन गए धार्मिक बंदे। खंड पाठ दा भोग पैण तों बाद खंड पाठ कराउण वाला ते करन वाला कहंदे फिर

तुलसी महाराज ने भी वचन किया कि माड़े कर्म वालों तो कथा कीर्तन नहीं सुनिया जाता। बहुत समझाया ना मनिया। एक दिन सिखा ने घेरे लिया, कहिंदे हुण

एक अच्छे देहधारी गुरु जिथे आप टुटे होंदे ने जिहड़ा नाल जुड़दा उन्हूं भी तोड़ देंदे ने आखो सतनाम सिंह। ये शब्द जिथे जिथे नाल नाल पढ़ना है अपने मना नूं समझाना है जिहड़े अजे भी गुरु नालों टुटे पए ने सतगुरु रहमत करन। आओ सारे पढ़िए।

कई बार नहीं सुने होंगे, नाल बोलना औखा होंगे, पर मेरी बेनती है पंक्ति सुन के सारे जरूर बोलो। सतगुरु मनुख दे अंदर भी ते मन की गल कर रहे ने, आओ यतन करिए गुरु का उपदेश श्रवण करन, हिरदे करके अंदर बसाइए, करो कृपा सारे पड़ो।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख पाही। माया मोह परम पर पूरे, सुतदा रास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ

नयंतु अंतन जपे गय मनमंत अंतन जपे गीताकारु अंतन जपे पारवारु अंत कारण गति बिललाही दाकि अंतन पाई जाहि एह अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए। बड़ा साहेब ऊंचा थाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ ए बड़ ऊंचा होवे कोई ते सूचे को जाने सोए। जे बड़े आप जाने आप नानक नजरी करमी दात बहुता कर्म लिखा न जाई। बड़ा दाता तिल न तमाई केते मंगह जोध पारू केत्या गणत नहीं बिचारू केते खप तुटह बेकारू केते लै लै मुकुर पाही केते मूर्ख खाही खाही केत्या दुख पोख सद मार वेह पे दातू तेरी दातारू बंध खलासी भाण होए हो राख न सकै कोई। जे को खाए को आखण पाए ओ जाने जे तिया मूं खाए आपे जाने आपे दे आके से पे के जिसनु बख्शे सिवत साला नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण मुल वापार अमुल वापारी अमुल भंडार अमुल आवह अमुल ल जाहे अमुल पाही मुल हसमाहे अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल मुल परवान अमुल बख्शीस मुल निशान अमुल कर्म मुल फरमान मुलो मुल आख न जाय आख आख रहे लिबलाई आख वीर पाठ पुराण आख पढ़े करे बख्याण आख है ब्रह्म आख इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईश्वर आख सिद्ध आख गीते गीते बुद्ध आख है दानव आख देव आख है सुर नर मुन जन सेव गीते आख है अखण पाए गीते कह कह उठ उठ जाए एते गीते होर करे दाख न सकै कई के जेवड़ भावे देवड़ होए नानक जाने सचा सोए। जे को आखे बोल बिगाड़ू तां लिखिए सरगावारा गवार सूदर के हा सो कर के हा जित मैं सर्व संभाली वाजे नाद अनेक संखा केते वावण हारे केते राग परिसं कही अन केते गावण हारे गावे तो न कौन पाणी बसंतर गावे राजा धर्म दुवारी गावे हैं चैत गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी।

नेमुख नेमुख तुम ही प्रतपाल हम बारिक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे नेमुख नेमुख तुम ही प्रतपाल हम बारिक तुमरे तारे जिहवा एक कवन गुण कहिय बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न के नहीं लही राव कोट बराध हमारे खंड अनक विधि समझाव हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाव तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सहेले, राखो रखनाल दयाला, नानक करके करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।

प्रकट करा भगत भजियाई, प्रकट करा भगत भजियाई, प्रकट करा भगत भजियाई, प्रकट करा।

0: CIS के 94.3 सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
4: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
5: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. Asi bol rahe haan Gurdwara Western Singh Sabha Williams Lake BC Canada ton. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3374। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3374। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

करें तत्काला कृपा दृष्टान जाय निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद कर मोह सब हो दुष्ट शास सख न कोई एक बार दिन तुम्हें संभारा काल पाते तही उबारा जिंदा नाम तिहारो कहा दारिद दुख दो तेरा खड़ के तुम्हें शर्म तिहारी।

राजा कर्म द्वार पैर सूर्य पैर चंद सो करोड़ी चौपनाथ पैर चित बोधनाथ पैर आगाने आकाश पैर ज्योत मां बसोर पैर छावे जावे पूर सगलिया को लिखिया सिर लेख नानक निरभउ नाम एक मला पहला।

0: बैणे पावन पणी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती मान वर्तन सर्व जंजाल नानक मस ज्ञान होनी कह गया जमकाल माला कला
1: वाहे चले चल कर हलाय से नसेरा।

देव की थी संतोष से ही जिन सचो सच त्याया उन मंदे पैर न रखे कर सुख धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला ने देवे चढ़े सवाया।

कमाई का संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी का सो करता चिंता करी जन माया जागो।

साहिब तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन के हृदय सच बसाया मूरख सच न जा।

0: काल जगर सगन का कूड़ कर महला पहला।
1: राम कहे चतुम्र स्वामी सच में ऐसा सच रहे सब कुछ सच समावे। रे कह रहे पर भू राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्राश्त जाए नान।

0: पौड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करी तो साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी। हुक्म मनया होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी। खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगह पैदा जाए सी, ता दरगह पैदा जाए सी।
1: कोई गावे रागी

0: गौ ब्राह्मण को कर लाव गोबरधन न जाय तोती टिक्का तय जप माली तार मले छाई अंतर पूजा पड़क ते बा संजम दुर का पाई छोटी ले पखंडा नाम लय जाय तरंदा महला पहला
1: मान सखाने करे निवास श्री गंगन गौतार दिनकर ब्राह्मण पूरा नाद ना प्यावे विषाद पूरी रात पूरा व्यापार पूर्ण बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक पूर है या परपूर मथा टिका देर धोती का खाई हत श्री जग का साई नील वस्त्र पहर हुआ प्रवान मलेश ताल पूजे प्राण
2: अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कटी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एवं साडा पिटे तन फिटे फेर करे ना मन जूठे चूड़ी परेण कौ नानक सच ध्याई है।

हट हेठ चलाएगा, आपे दे बड़े आईया आपे ही कर्म कराएगा, बढ़ो बड़ा बड़ मेदनी सर सर तंदे लाएगा, नदर पठी जे करे सुल्ताना का उकराएगा, धर्मंगन

0: अन्न देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लूण पंज पाया कित ता हुआ पाक पवित पापी सौतन कड्या थुका पइया तित जित मुख नाम न उचर है बिन नावै रखा हे नानक ए वै जानी है जित मुख दुखा पाए महला पहला
1: पंड जमी है पंड निमी है पंड मंगण विया पंड होवे दोस्ती पंडो चले रा पंड मुआ पंड पानी है पंड होवे बंदान सुख मंद रखिए जित जमे राजान पंडो भी पंडो पूजा पंडे बाज न कोई नानक पंडे बाहर आए कु सच्चा सोए
2: जित मुख सदा सलाइए पादा रखी चार नानक ते मुख उजले तित

पुकार, नानक करण जन किया फिर तेसी करनी सार, नानक करण जन किया फिर तेसी करनी सार।

नेमुख नेमुख तुम ही प्रतपाल हम बारिक तुम रे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे नेमुख नेमुख तुम ही प्रतपाल हम बारिक तुम रे तारे जेह वा एक कवन गुण कही है बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न के नहीं लही रहा कोट पराध

तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले।

क्षमा करो कोई ओ क्षमा करो कोई परी माने नु हटावे ना क्षमा करो कोई परी माने न

किम्त चर्दी चढ़ गई दो अरबी कोड़े हो किम्त चत चर्दी चढ़ गई दो अरबी कोड़े मैं किम्त चर्दी चढ़ गई दो अरबी कोड़े हो किम्त चर्दी चढ़ गई दो अरबी कोड़े औरत लिखी करतार जी ओनू केड़ा बोले ही

उठे। चेत का महीना की करेगा, उठे बसंत भी रुत की सुमारेगी। एक ख्याल दे रहे हैं मनुखी जीवन दे अंदरले बारह माने न, इसलिए हर बदलती रुत तो आगाह कर रहे हैं। तो भलिया देखे अंदर भी कोई महीना बदल रहा है, उनके संस्कार समझ ले, जे ना समझ सके हो रुत बदल जाएगी, तेरे वास्ते कुछ नहीं रहना। गुरु कहते ने विसाख की है, विसाख की है, आप जिन्हू हो सकता याद हो वे, पिछले दिहाड़ियों में गुरु नानक पातशाह जी दे बख्शिश कीते हुए विसाख दे महीने दी विचार भी हुई, जिंदे विच गुरु नानक पातशाह जी ने गुरु अर्जन पातशाह जी दे विसाख दे महीने नू जदों आमो सामने रखिए ते होर खुलासा कर दिया। अज सवेरे एक ख्याल आया कि चेत की है बसंत, बसंत की रुत हरियावल की प्रतीक है, हर पासे हरियावल, हर पासे खेड़ा, उस सर्दी से गर्मी नू इकट्ठिया कर दी, सहज अवस्था है। सहज अवस्था नू बसंत की रुत विच गुरु ने नाम दिते। गुरु कहते ने ख्याल करिए इन दे विच गुणा के फुल खिड़ते ने, हरियावल पैदा होंगी है गुणा की। नवे पत्ते नवीं परूंबलां फुटदियां ने, पर एक शर्त है, जो मुकाबलतन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कोलों ही कई गल्लां पुछिए ना, बड़ा स्पष्ट हो जाएगा जवाब। गुरु ने बसंत की रुत बारे ही एक गल फरमाई, कह लगे

जिन्हें स्पष्ट देता है कि मैं कहना चाहना विश्वास क्यों चंगा है। क्यों? क्योंकि विश्वास के गुरु नानक पातशाह जी ने अर्थ किए हैं, उनके दो शब्दों को जन्म दिता, मैं अर्थ की दो शब्दों को जन्म दिता है विश्वास। क्योंकि किसी भी लफज न किसी भी शब्द को जन्म देने लिए घटो घट दो अखर चाहिए, एक अखर अखर होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होंगे। रारा है मम्मा है, चचा रारा नन्ना है, वखरा वखरा है, कोई अर्थ नहीं। जे तीनों जुड़ जान चरण बन जाएगा। घटो घट दो अखर चाहिए ने शब्द की चोण लिए, विसाख लिए तीन अखर ने, दो सहायक ने जिन्हें लगातार आखने, तीन अखर ने विसाख लिखी है ना, तीन अखर ने वाह वाह सस्ता ते खखा, ते दो ने लगा मात्रा वे हा सस्ते नु करना वाबे नु ला, दो लगा मात्रा ने तीन अखर ने, हुण तीन अखर विचों असीं दो अखर एक पासे कर लईए, फिर वो विचले अखर नु दूजे पासे कर लईए ते दो अखर फिर बन जांदे ने, तां फिर इहदे विचों दो शब्द पैदा हो सकदे ने जिहड़े गुरु नानक पातशाह जी ने पैदा किए ने और अर्थ स्पष्ट किए ने। कहने लगी

सुर लोढ़ेन सुखा दाता पुत्र कलित्र न संगताना। वो भी साथ छड़ गया। ओ पलिया जे कभी तेनु पछाण होवे ता एहो जे औखे समय जदों हर कोई साथ छड़ देवे ना ओदों भी ओ मालिक नहीं छड़दा जे हुंदा बणिया रहिंदू हर अवनासीओ। पर होया की पलच पलच सदली मुई इस जाल विच फस के इंदे विच प्रवृत्त होके गुरु कहिंदे ने मैं देखदा की हां संसार दे बहुते लोग मूल नालों टुट रहे ने सुकियां होईयां शाखा बन रहे ने उन्हां ते गुरु कहिंदे ने मैं देखदा की हां बसंत दी रुत आउंदी है चली जांदी है रोज गुरुद्वारे आउंदे ने। गुरु कहिंदे ने मैं देखदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब बचन कर रहे हुंदे ने अमृत दी वर्षा हो रही हुंदी है पर मन हरा नहीं हुंदा। कल भी शराब पींदे सन अज भी पींदे ने कल भी झूठ बोलदे सन अज भी बोल उंदे ते कोई असर नहीं हुंदा क्योंकि सुक्की टाणी बन गए ने। गुरु बसंत दी रुत है गुरु बसंत दी रुत है असर नहीं होंगे क्योंकि सुक्की हुई टाणी बन गई पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे दो। कह लगे ख्याल करी इस नाम तो बिना हो जिन्नी दौलत जिन्ने संसार दे पदार्थ इकट्ठे कर रहा है ना जिन्ना पिछे तेनू नाम भुल रहा है प्रभु भुल रहा है। बाबा कृष्ण जी ने क्यों आख्या

0: सुख प्रभ चित आए।
1: ये भाई जदों परमात्मा सानू विसर जांदा है ना, भुल जांदा है ते समझ लैना, फिर सारे दुख जेड़े ने साडी जिंदगी विच आ जांदे ने। जिसनों विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई। विछोड़ा सुने दुख विण डिठे मरियोद, बाज प्यारे आपने बिरही ना तिरोंद। भावें दुनिया का धन सरमाया भी उन्हां दे सामने होवे, पर जे परमात्मा विसरिया होया ते साहब कहिंदे कुछ भी चंगा नहीं लगता, फिर तो मोहे रहण ना विहावै, नींद ना आवै। इहो जी अवस्था के भावै अन्न ना पानी, एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता। हुण कद मिलिया प्रे तुध भगवंता, फिर अंदरों एक वेदना जन्म लैंदी है कि ऐ मालक हुण तू सानू मिल, तां कि सदीवी सुख जेड़ा वह सानू प्राप्त हो सके। क्योंकि सुख तां जदों तुसी चेते आउंदे हो, जदों तुसी याद आउंदे हो, ये सब तो वड्डा सुख है। मेरे गुरदेव जी ने पावन बाणी विच होर थावां ते भी जिक्र कीता है कि जेड़ा पदार्थां वाला सुख है ना, वह तां अख झमकण दे समें विच ही बिनस जांदा है, क्योंकि अल्प सुख है। बिनस जाए जो निमख मैं सो अल्प सुख भनी है। जेड़ा सुख केवल खिन मात्र है, खिन भंगर है, अख झमकण दे समें लई सानू सुखी करके फिर दुख दिंदा है, कहण लगे वह सुख सुख नहीं है। सुख तां वह है जेड़ा हर वेले जीवन में जेड़े उतरा चढ़ा आउंदे ने उत्थे जाके भी कायम रहे। मैं अगे भी कई बार उदाहरण दिती है कि जिवें पानी बहुता होवे ते मिट्टी भी चमकण लग पैंदी है, जे किते पानी दी मात्रा घट जावे ते मिट्टी चिक्कड़ बन जांदी है। साडी जिंदगी विच जदों परमात्मा नाल जुड़ के वड्डा सुख आ जांदा है ना, आ निके निके दुख जेड़े ने ये वड्डे सुख दे विच जज़्ब हो जांदे ने, ये सानू दुख दुख ही नहीं लगदे। पर जदों परमात्मा विछड़ जांदा है ते फिर समझना कि एडा वड्डा दुख कि आ जेड़े दुनिया दे सुख ने ये बिल्कुल जिवें थोड़े पानी विच पै के मिट्टी भी चिक्कड़ बन जांदी है। प्रभु दे विछोड़े दे वड्डे दुख विच साडे निके निके सुख भी जा के उत्थे बिल्कुल चिक्कड़ वांग खत्म हो जांदे ने, ते सानू इंज लगदा है कि जिन्ने भी सुख ने उन्हां सुखां तो बाद फिर सानू दुख मिल रहा है। क्योंकि सगल सृष्ट को राजा दुखिया, साहब कहिंदे कोई राज भाग दे सुख भी माणदा होवे ते है तां असल विच उह भी दुखी, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। बाबा फरीद जी कहिंदे कदे घर विच बलदी होई अग वेखो ते इंज लगेगा कि जिहड़ी गरीब दे घर दी अग है ना, उहदे गिले गोहे गिलियां लकड़ां उहदी धुख तुखी जिहड़ी उहदा धुआं जदों कंधां नाल लगदा ते कंधां वी कच्चियां होण करके कालियां हो जांदियां ने। गरीब दे घर दी अग सानू बलदी होई दिसदी है, पर अग तां अमीर दे घर वी बलदी, अग तां राजे दे घर वी बलदी है, पर उहदा घर पक्का है, उहदे घर अग दे प्रबंध बड़े। अज दे युग मुताबक आपां कहीए कि उहदे विचों बाहर निकलदा होया शायद धुआं वी सानू दिखाई ना दवे, पर यह सच्चाई है कि अग तां अमीर दे घर वी बलदी है। बाबा फरीद जी कहिंदे कदे उच्चे चढ़ के देखो घर घर दुख दी अग बल रही है। फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू, दुख सुभाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया घर घर एहा अग। पर अगला बचन क्या कहन लगे, फरीदा भूम रंगावली मंज वसूला बाग, जो जन पीर नवाजिया तिना अंचना लाग। ये दुख व्यापक है, पर जेड़े रब रूपी पीर नाल जुड़ जांदे ने दुखां दी आंच उन्हां नूं नहीं आउंदी, उन्हां दे दुख भी सुखां विच बदल जांदे ने। समझ आ जांदी है कि दुख तां लगदा है मालक जी जदों तुसीं विसरे हो, कि सुख उदों जदों असीं